बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम बांग्लादेश बेतार खुलना सकाल 11:59 शुरू हलो आजकेर द्वितीय अधिवेशन अनुष्ठान प्रचारित होच्छे मीडियम वेव 537.63 मीटारे अर्थात 558 किलोहर्ट्ज़ एक ही साथे एफएम बैंड 88.8 मेगाहर्ट्ज़ एवं बांग्लादेश बेतारेर मोबाइल एप थेके अनुष्ठान घोषणा रयेछे आमी नवाज हासान अधिवेशन तत्त्वावधाने नुसरत शायला प्रकौशल तत्त्वावधाने खान आल आमीन প্রকৌশল সহযোগিতায় রয়েছেন মোহাম্মদ সাইফুজ্জামান ও অভিজিৎ মণ্ডল। শুরুতেই বাংলা সংবাদ ও আবহাওয়া বার্তা ঢাকা কেন্দ্র থেকে রিলে করে শোনানো হচ্ছে।